राय जी ने पछाण लिया, ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए, राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां

मोती खाना छोड़ दिता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या होण नहीं लेना। उथों वे ही नदी ते आए, बाला नाल है। साहब जी ने आख्या, बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख, ते असी वे इश्नान

संसार विच हुण जगत जिया नू तारन वास्ते निकल पए, जिथे किथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह गए। जे सज्जन ठग कोल गए तां सज्जन ठग नू ठग तों संत सज्जन बना दिता, जे भूमिए चोर कोल गए ते भूमिए चोर नू साध बना दिता, साधु बना दिता। जे गुरु नानक दी नदर कोड़े रिठे ते पई तां ओ रिठा कोड़ा ना रहा, मिठा हो गया। जे गुरु नानक दी नजर कोड़े राक्षस ते पई ते ओ राक्षसी बुद्धि

कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब का नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते, किती वड्डी गल है। सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम, रब दा नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

जग्यासू जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नसा फिरदा है दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैला।

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

सेवा का मतलब शिव जी नहीं है। शिव शिव करते जोरदार से आवे बलद चढ़े दारू चमका दे बलद की जून च पैंदा है। मां माई की पूजा करे नरसे नार होए औतरे ओ नार की जून च पैंदा है। तू कही आद तो आनी मुक्की बरिया का छपानी इस वास्ते हिंदू अन्ना तुरकू काला दोवा ते ज्ञानी सियाना जेड़ा एक तो बिना दूजे नूं मनदा ही नहीं। शिवा का मतलब शिव जी नहीं, शिवा का मतलब पावन मैनू वर दिओ पावन। शिवा मैंने शुभ शुभ वर मैनू बख्शो केड़ा शुभ कर।

जन कब होना हार। ताल जो जाने पासा, ताल जो जाने पासा, ते जन कब होना हारे।

0: खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना
1: मेरा तो नाम गोविंद सिंह। अस खिलौना छोटी राम।

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

प्रसाद ही इन्हीं जब्त जिते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुधार करे आज आग टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं के प्रसाद को मिला रही इन्हीं के प्रसाद को मिला रही इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा मिल सके हमें नहीं बहुत करूँ।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

कबीर लागे प्रीत सुजान स्याम लागे प्रीत सुजान स्याम बजे दोख हजाम मोहे लागती ताला बेली मोहे लागती ताला बेली बचरे बिन गाए हवेली।

सलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की उस सुभास, जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की कटाकन को।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग तन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जिहड़े आनंदपुर साहब रहा करते सन वो कहंदा मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजिया महाराजिया मिलना बड़ा औखा।